0: गर्मी भाई के सो प्यू न
1: प्यू न लाई चीसो उठाओ हॉर्लिक्स
0: गर्मी मनाया ट्रिक
1: रिफ्रेशमेंट बार न्यूट्रिशन मिक्स
0: चीसो हॉर्लिक्स।

0: पोखरा क्लिनिक न्यू रोड पोखरा फर्टिलिटी होप लाइन 01-597-06-11
1: ओहो नासर बे कति छाब डिजाइन बे मारे गना खिनानी खनी तोला
2: खनाई दिवा नासर बे रूपाकोट ज्योति सुनचाती दुकान महेंद्र पुलादी तोला
1: ए नई छाबा मारे दुकान पो मोना नई प्रेसोलाई नी चार चूरा रैया औठी हमेला झोका टस टिग्री हार तान चनाई तो होनी जग मात्र आंगी खैमा खैमा समस्या पर्दी र मार चुवल तुई बिसानारी बेल्ले छाबा पोपिम ओछे
2: हजुर किमे झोको लाइनी छाबा छाबा छाबा मारे डिजाइन गहना चैदी म बिसा वा चुवल तुई बिसा रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दुकान पोखरा महेन्द्र पुलारी खो जु दुकान पोखरा महेन्द्र पुलाई विशाल बजार गेट गलो धिताई पालिकी चोकै यावै क्यार मोहै
1: जग मात्र आंगी रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दोकाने घी शाखा पोखरा महेन्द्र पुलरी अन्नपूर्ण सुपर मार्केट आडरे मुहै आसुम ल्यादो
2: समुदाय रबा ताक रिबा जाल जाति कृबा छतैरा नत खैमा बिलन चन्न यामो
1: तोय निल तुई बिस्या रूपाकोट ज्योति सुनचाँदी दोकान महेन्द्र पुल पोखरा सम्पर्क 061-580-815 98-560-35-815 प्रोप्राइटर दशरथ सुनार
2: छताइरा त तान निभिम्द
3: बाजेदेखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाउ है रूपाकोट

0: शांति आराधना र उपहार का लागि समेत प्रयोग गर्न सकिने कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती नेपालको पहिलो ISO सर्टिफाइड अगरबत्ती कम्पनी
1: कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती पवित्र सुवास
2: पोखरा ग्रामर स्कूल उज्जवल भविष्य को सही शुरुआत
3: पोखरा में अनुशासन मूल्य र गुणस्तरीय शिक्षा को नया गंतव्य पोखरा ग्रामर स्कूल डेमसाइट में अब संचालन में
2: फिस्टेल समूह द्वारा व्यवस्थापन
3: आधुनिक प्रविधि र अनुभवी शिक्षक
2: स्टीम र अनुसंधान में आधारित सिकाई
3: जापानी अनुशासन समय पालन र आत्मा जिम्मेवारी
2: कला संगीत योग माइंडफुलनेस र मार्शल आर्ट
3: नया शैक्षिक सत्र 2083 का लागि कक्षा 9 सम्म भर्ना खुल्ला
2: स्थान पोखरा 17 ड्याम साइड फिस्टेल एकेडेमी को पुरानो परिसर सम्पर्क 97135453
3: पोखरा ग्रामर स्कूल सिकाइ मात्र होइन जीवनको तयारी
4: 93.4

रॉयल मेटल इंडस्ट्रीज को उत्कृष्ट उत्पादन जिंदल एसएस पाइप्स नेपाल नंबर वन ब्रांड। नक्कली देखि सावधान, जिंदल को लोकप्रियता ले गर्दा नक्कली जिंदल बजार में आएको हुनाले प्लास्टिक में मात्र नभई पाइप में पनि जिंदल लेखेको पाइप मात्र खरीद गर्नु होला। टिकाऊ र गुणस्तरीय काम जिंदल पाइप हो यसको नाम।

0: तपाईँ यसपछि समाचारमूलक प्रस्तुति अन्नपूर्ण हाइलाइट सुन्न सक्नुहुनेछ।
1: बाजेदेखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट, त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाउँ रूपाको।
2: टाइम चेक।
3: यति बेला रातिको 9 बजेको छ।
4: यस टाइम चेक का प्रायोजक रूपाकोट ज्योति सुनचारी दुकान महेन्द्र पुल पोखरा।
5: किन्नुस अब ढुक्कले सुनका गहना, गए अब रसायन केडियम राख्ने समय।

0: हो। बाजेदेखि नातिसम्म पाइन मैले कुनै खोट, त्यसैले भने जस्तो गहना किन्न जाउँ है रूपाको।
1: टाइम चेक।
2: यति बेला रातिको 10 बजेको छ।
3: यस टाइम चेक का प्रायोजक रूपाकोट ज्योति सुनचादी दुकान महेन्द्र पुल पोखरा।
4: किन्नुस अब ढुक्कले सुनका गहना, गए अब रसायन केडियम राख्ने समय।
5: तुम ऐसे ही कोई भी लड़की नहीं हो, कैसे एक्सप्लेन करूं कि तुम स्पेशल हो?
6: ये भी मैं बता, मैं कैसे स्पेशल हूँ ये मुझे बताना है तो तुम क्या करोगे? रोल क्या है तुम्हारा?